जानते महादेव कहो कहत सदा सेवा निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध जीती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केहे बिन सजा प्रथम संसारा।

तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुट छा छब सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फास्ते ताहु बारा जिन नर नाम तिहारु कहा दर्द दुर दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दल्यो बारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुर दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छा करता श्री अस्तुज जा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख नत सभ्यापत कोई अड़िल

स्वर्ग बास राग बरकर सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुनै अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आदिया छुसक न कोई सम्मत सत्रह सास पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लो सुधारा दोहरा

सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह कर तेरा कार्ज सब सवारना सबना गलना समरथ स्वामी सो क्यों मन हम सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबां क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन मसावे

नित नित रख उर तहरो तब संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

14 के विकान जग जापई जह जाप आद देव अनाद मूर्थाप्य सब जे थाप परम रूप अपनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सबर च्योस जम पह ग्रण पंजन हार कालहीन कलासन युक्त काल पुरख देसो धर्म धाम सो परम डात भूता लक पेस अंग राग नरंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीन आप रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सरपंजन आदि रूप अशूत अंग हीन अभंग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत भार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ध्यान पेक सर्व शास्त्र न जान।

गुण गण उदार महिमा अपार असन भंग उपमा नांगन भव प्रकाश निस्त्र नास आजन बाहु साहन साहु राजन राज पहनल पहन देव वन देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बालु रंकन रंक कालन काल अनभूत अंग अब भंग गत मित पार गुण गण उदार मोन गण प्रणाम निरभय निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिसा कर्म दृष्टा धर्म सर्वा प्रणाडे अंडन बडे चाचरी चांत प्रसाद गोबिंद मुकंद उदारे पारे हरियं करिंग नाम कामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासी चतर चक्र वासी चतर चक्र माने चतर

पवित्र है, प्रतीस है, आदिश है, अदृश है, अकृष है। भगवती छंद ता प्रसाद कत्ते के आचज देसा के अभिज पिसा के अगंज करम है के अभंज परम है के अभिज लोक है के अद्भुत सुख है के अवधूत वर्ण है के विभूत करण है के राजिंग प्रभ है के त्रमंग तुज है के अशोक वर्ण है के सर्वा परण है के जगतंग कृति है के छतरंग छत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपह अनुप है के आद अदेव है के आप पेवे के चतरंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजाका रिहीमा रेहाक के पाक ब्यावें के गैबल गैवें के अफल गुनाह के साहन साह के कारण कुणिंद है के रोजी देहंद है के राजक रिहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गवनाय के सर्वत्र पौनय के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिस है के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीनाय के सर्वत्र लीनाय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालाय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सुखाय के सर्वत्र पोखाय के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पान्याय के सर्वत्र मान्याय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलिमे के परमं अफीमे के अकल अलामे के साहिब कलामे के उसनन वजु है तमाम रजु हमेशा सलामे सली खत्म दामे गनी मुल सकस्त है गरीबल प्रस्त है बिलंदल मकान है जमीन जमान है तम जुल तमाम है रुजुल नदहन है हरि फल रजीम है रजायक जकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है जीजुल नवाज है गरी मुख राज है निरोगत स्वरूप है त्रिमुगत भूत है प्रभुगत प्रभ है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सबसाज है समस्त सलाम।

अनासें दासें धांदें बंदें भगदें ब्रभतें नास प्रकाश है। नचिंतें सुनंतें अलिखें देखें लिखें भिखें ठाहें गाहें सब है गम है नील है नादें अनित है सुनित है अजात है जाद है चरपड़ छंद त्व प्रसाद। सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राण सर्वंगत्राण सर्वंगकर्म सर्वंगधर्म सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता रक्षावलछंद त्वप्रसाद। नमो नरकनाशी सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वं।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासी अगंजल अनामे समस्तल निवासे निकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते।

अन्न गायो नाथ प्रेय लिए सा समुंदरन लोग गयो पर लोग गवायो बासकियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो सब बस बतायो साच का हूँ सुन लियो सब।

सी बार माया माया अग्नि सब को जय ही करता है के रचाया जहां तस भाणा ता जमया परवार भला पाया चुड़की लगी तस ना माया अमर वरताया ए माया जित।

भगत राम गुण गाए हरि वाहिगुरु दी भगती करदे राम गुण गाए आम जेड़े राम हरे आम रमिया होया परिपूर्ण है सच्चे पातशाह गुण गाए ओदे गुण गायन वाले बन गए ओदे गुण गाउंदे हर वे हुण ओदे अगे ही अरदासां बेनतियां ओदे गुणा नूं गाउण दी नाम दी